0: बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: सुप्रभात, नमस्कार एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग सिटी ऑफ जॉय कोलकाता और उस कोलकाता के द रियल रेडियो 107 एफएम रेनबो पर ढेर सारा प्यार और अपनेपन के साथ हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त सुलक्षणा पर्वत लेकर ढेर सारा प्यार और आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ, वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ उस मॉर्निंग शो में जो कि है आपका पसंदीदा दिल से दिल तक वाले चैनल पर। हाँ जी, जहाँ आप और हम कनेक्ट होते हैं हार्ट टू हार्ट। नॉनस्टॉप गपशप है प्रोग्राम का नाम और किसी न किसी एक विषय पर जरूर बातें करूंगी और इसके साथ साथ और भी सेगमेंट्स रहते हैं आपके लिए नॉनस्टॉप गपशप में। लेकिन क्यों ना शुरुआत करूं मैं आज के इस दिन के कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप का इस गीत के साथ, पहला नशा फ्रॉम द मूवी जो जीता वही सिकंदर, उदित नारायण साधना सरगम की आवाज में इस खूबसूरत से तराने को आप तक पहुंचा रही हूं 107 एफएम रेनबो के जरिए।

जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि नॉन स्टॉप गपशप में एक विषय तो जरूर रहता है, तो बता दूं कि आज जो विषय है नॉन स्टॉप गपशप में जो लेकर आई हूं वो मतलब इतना रेलेवेंट टॉपिक है कि मैं आपको क्या कहूं। गर्मियों के मौसम में, जी हाँ, गर्मियों के मौसम में आपके कूल कूल फंडे क्या होते हैं जिससे आप कहते हैं कि आई बीट द हीट, यानी कि आप बीट द हीट फॉर्मूला को किस किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो कौन कौन से फॉर्मूला है आपके जिसको आप इंप्लीमेंट करते हैं इस हॉट हॉट गर्मी के मौसम में अपने आप को कूल कूल रखने के लिए। वैसे बताऊं, क्या ही बताऊं आपसे, गर्मियों में चिलचिलाती धूप और लू हीट वेव से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखें, हल्के और ढीले सूती के कॉटन के कपड़े पहने। हाँ, अब ये मत सोचिएगा सूती का कपड़ा कहना मतलब वो बहनजी टाइप या भाईजी टाइप, नहीं, यू कैन लुक हॉट एंड कूल, प्रिटी वुमन दिख सकती हैं आप, कूल डूड भी दिख सकते हैं। आजकल कॉटन में बहुत सारे फैशनेबल ब्रांड्स हैं। और दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचें, ठंडा

रखने के लिए नींबू पानी, नारियल पानी और छाछ का नियमित सेवन करें। और भला ये कैसे भूल सकती हूँ कि सत्तू का शरबत जो है ना, वो भी आपके सिस्टम को रखता है पूरा कूल कूल, और आप हाइड्रेटेड भी रखते हैं, फुल ऑफ प्रोटीन भी है और न्यूट्रिशियस भी है। और फिलहाल अब रुख करते हैं उस गीत की ओर, जो कि खास करके अगर मैं कहूँ तो मैं जब भी ये गाना प्ले करती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में बस वही रहता है। कौन? अजी वही जो जोड़ता है हमें दिल से दिल तक, यानी कि 107 एफएम रेनबो, आकाशवाणी कोलकाता का 107 एफएम रेनबो, सिटी ऑफ जॉय कोलकाता का दी रियल रेडियो। इस पे ये गाना एकदम ठीक बैठता है, सूट करता है।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ, मैं किससे बात कर रही हूँ? आप कौन बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं अजय दुबे बात कर रहा हूँ, भोपाल से।
0: अजय दुबे भोपाल से। तो चलिए, ये कनेक्शन जुड़ गया है मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल का, यानी कि भोपाल का और कोलकाता का 107 FM रेनबो के जरिए कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप के साथ। तो ऐसा है अजय दुबे जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में। और ये बताइए कि आप करते क्या है?
1: मैं एक भोपाल से प्रकाशित मेरा न्यूज़पेपर है दैनिक कालिंदी,
0: हाँ,
1: तो उसका मैं संपादकीय करता हूँ।
0: चलिए, तो मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, मतलब एक एडिटर साहब से मैं बात कर रही हूँ पत्र
1: जी
0: न्यूज़
1: जी
0: में।
1: जी जी जी
0: ऐसा मतलब आज जो हमारा विषय है वो है कि गर्मियों के मौसम में ऐसे कौन कौन से टिप्स आप अपनाते हैं अपने और अपने परिवार के जो है वो हेल्थ को देखते हुए, कि जो उनके सिस्टम को बड़ा कूल कूल रखे।
1: एक्चुअली हम लोगों का फील्ड का काम भी रहता है, तो हम लोग जब निकलते हैं तो अपने साथ पानी की बोतल, गमछा रख लेते हैं, और एक पुराना वो चीज है कि एक छोटा सा प्याज जेब

0: में रहना चाहिए जिससे लू ना लगे,
1: लू ना लगे, हीट वेव से आप बचे।
0: हाँ, लू से, हीट वेव से बचे। और बच्चों के लिए भी यही रहता है कि हम पेय पदार्थ जैसे आम का पाना वगैरह, हम लोग सत्तू की लस्सी वगैरह या दही की लस्सी वगैरह का सेवन ज्यादा करते हैं घर में हीट वेव से बचने के लिए। जब जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले।
1: अच्छा ये बताइए, चूंकि आप एक समाचार पत्र के एडिटर हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि आपके अखबारों में गर्मियों के मौसम में क्या समर स्पेशल कुछ टिप्स भी जो है उसके लिए कोई सेगमेंट रहता है?
0: हाँ, रहता है, पेज नंबर 8 पे हमारे लिए इसी के लिए रहता है, समर स्पेशल ही। तो ये आता रहता है, वीक में 2 बार आता है।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है। और ये बताइए कि मतलब कपड़ों पे आप किस तरीके से मतलब कपड़ों को अपनाते हैं ताकि आपको गर्मी के मौसम में जब भी आप बाहर निकलें तो आप कूल दिखें, अच्छे दिखें, फैशनेबल रहें, लेकिन फिर भी वो मटेरियल कौन सा होता है जिसे ज्यादा से ज्यादा आप इस्तेमाल करते हैं?
0: कॉटन के मैम,
1: कॉटन के
0: कपड़ों का ही ज्यादा से ज्यादा हम लोग उपयोग करते हैं, और प्लास्टर वगैरह के कपड़ों से बचते हैं, ब्लैक कपड़े पहनने से बचते हैं ताकि ज्यादा हीट न लगे।
1: और कहा जाता है कि गर्मियों के मौसम में जब बहुत कड़ी धूप हो तो लाइट कलर्स के कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहने।
0: जी जी जी।
1: और सनग्लास का उपयोग करें अगर हो सके, अगर मतलब हर जगह तो इंसान गमछा नहीं ले जा सकता, तो वहां पे आप हैट का भी, चौड़े हैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, टोपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और छतरी तो साथ में जरूर रखनी चाहिए, है ना? चलिए बहुत अच्छा लगा अजय दुबे जी, आप भोपाल से जुड़े कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप में। यूं ही कभी समय मिले तो बिल्कुल जुड़िएगा, और हमारे कार्यक्रम में 4 चांद लगेंगे आप जैसे श्रोता जब जुड़ते हैं। तो चलिए बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।
0: थैंक यू।
1: तो ऐसा है दोस्तों कि अब आप सभी को भी गर्मी तो लगी रही होगी थोड़ी थोड़ी, अब इस गर्मी में आप सभी के लिए मैं क्या करूं? हाँ, एक काम कर सकती हूं, आप सभी तक मैं पहुंचाती हूं। क्या अजी? नारियल पानी।

0: मौसम संबंधी सूचना। हल्की से मध्यम गरज और बिजली कड़कने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवा चलेगी, जिसकी स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे होगी अगले 2-3 घंटों में, और साउथ 24 परगना कोलकाता जिले के कुछ हिस्सों पर असर पड़ने की बहुत संभावनाएं हैं। मौसम संबंधी सूचना समाप्त हुई। म्यूजिकल योर्स पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप विद योर आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत। और ऐसा है दोस्तों कि आज हम नॉन स्टॉप गपशप में बात कर रहे हैं कि इस गर्मी के मौसम में आप कौन कौन से फॉर्मूला अपनाते हैं टू बीट द हीट एंड टू कीप योरसेल्फ कूल कूल समर कूल। तो अब ये जानना चाहूंगी मैं, देखती हूँ फोन पर कोई हमारे अगले कॉलर फ्रेंड हाजिर है। हेलो।
1: हेलो,
0: नमस्कार।
1: नमस्ते मैम,
0: आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम दिगंबर गिरी और हम पार्क स्ट्रीट
0: से आप बोल रहे हैं, दिगंबर गिरी। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है दिगंबर जी कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप में, जो कि 107 FM रेनबो पर आप सभी सुनते हैं 10 बजे से लेकर 11 बजे तक। और आज हमारा विषय है कि मतलब कड़कती गर्मी के मौसम में आप अपने आप को कैसे कूल कूल बनाए रखते हैं, कौन कौन से फंडे टिप्स अपनाते हैं?
1: ये तो 2-3 देसी नुस्खा है मैम, जैसे सत्तू का हो गया, सत्तू का शरबत हो गया, और ये तरबूज का हो गया या लस्सी हो गया। तो दिन का शार्ट तो यही सत्तू का लस्सी शरबत नहीं होता है मैम।
0: और ये तो हुई पेट पूजा वाली बात, लेकिन इसके अलावा भी जब आप मान लीजिए कि 12 बजे से 3 बजे तक अगर बहुत जरूरी काम ना हो तो लोग नहीं निकलते हैं, लेकिन फिर भी अगर उस तपती हुई गर्मी में निकलना पड़े तो फिर आप कैसे निकलते हो, क्या तैयारी करते हो?
1: तो उसके लिए तो छतरी का उपयोग करते हैं हम लोग।
0: छतरी का उपयोग करते हैं, आपको सनग्लास लेना चाहिए, वो भी चौड़े फ्रेम वाली। हाँ, आप चाहे तो हैट भी ले सकते हैं। और एक नानी दादी का नुस्खा हुआ करता था, नानी दादी ही क्यों, दादा और नाना भी बताया करते थे कि जब भी तेज धूप में निकलो तो अपने जेब में एक कच्चा प्याज रख लिया करो, है ना, तो उससे हीट वेव में काफी मदद मिलती है। और कपड़े पे भी ज्यादा तवज्जो देते हैं, कहते हैं कि हल्के रंग के कपड़े पहना करो और ढीला ढीला कपड़ा पहनो, बहुत टाइट कपड़े ना पहनो। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आप कार्यक्रम में जुड़े, और अलग से अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, कि कुछ अगर खास हमारे श्रोताओं से आप साझा करना चाहते हो तो?
1: बस यही कहना चाहेंगे कि गर्मी में अपनों और अपना ख्याल रखें,
0: अपनों का और अपना ख्याल रखें। कितनी अच्छी बात है कि अपनों का और अपना ख्याल रखें, और इसीलिए तो हमारा 107 भी जो है ना कुछ इसी तरह का फंडा अपनाता है, और हमारा जो है टैगलाइन है दिल से दिल तक, यानी कि हम दिल से दिल तक जुड़ने वाले लोग हैं, म्यूजिकली योर्स भी हैं, रहते हैं 24/7 ऑल डे ऑल नाइट। तो किसी भी वक्त आप ट्यून इन करो 107, तो कोई ना कोई कार्यक्रम आपको सुनने को जरूर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।

0: अंबर जी, और यूं ही समय मिले तो बिल्कुल जुड़ा कीजिएगा।
1: थैंक यू सो मच मैम।
0: तो हमारे साथ अभी पार्क स्ट्रीट से जुड़े थे दिगंबर गिरी जी, और फिलहाल आप सभी के लिए अगला ट्रैक है सनी सनी यारिया फिल्म से, यो यो हनी सिंह और नेहा कक्कड़ की आवाज में।

0: आज के दिन,
1: आज के दिन वो सेगमेंट है नॉनस्टॉप गपशप में जिसमें हम बताते हैं कि आज के दिन देश और दुनिया के इतिहास में कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज की गई हैं। सारे तो नहीं, लेकिन कुछ एकाद आपसे जरूर साझा करूंगी। जैसे कि 1521 में उस्मानी सेना ने भयानक लड़ाई के बाद बलकान प्रायद्वीप में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड पर अधिकार किया। 1536 में आज के दिन 19th में इंग्लैंड के राजा हेनरी अष्टम की दूसरी पत्नी और क्वीन एलिजाबेथ प्रथम की मां एने बोलिन को व्यभिचार का दोष सिद्ध होने पर मौत के घाट उतार दिया गया। 19th में 1743 में जियोपिरे क्रिस्टन ने सेंटीग्रेड तापमान पैमाना विकसित किया था। 1892 में बहुचर्चित नाटककार और कवि ऑस्कर वाइल्ड को 2 साल की सजा के बाद जेल से रिहा किया गया था। 1904 में भारत की शुरुआती उद्योगपतियों में से एक टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा का निधन हुआ था। 1910 में नाथूराम गोडसे का जन्म हुआ था। इतिहास में वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे के तौर पर दर्ज है। 1913 को नीलम संजीवा रेड्डी का जन्म हुआ जो देश के छठे राष्ट्रपति बने। 1934 में अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड का जन्म हुआ था। 1950 में मिस्र के स्विज नहर को इजरायली जहाजों के लिए बंद करने की घोषणा की गई थी। 1971 में भारतीय नौसेना का पहला पनडुब्बी अड्डा वीर बाहु विशाखापत्तनम में शुरू हुआ। 1979 में हिंदी के शीर्ष साहित्यकार हजारी प्रसाद त्रिवेदी का निधन हुआ था। 2008 में 19 मई को भारतीय नाटककार और रंगमंच कर्मी विजय तेंदुलकर का निधन हुआ था। 2008 में भारत एवं चीन के बीच नाथुला से व्यापार पुनः शुरू हुआ।
0: आज के दिन

हाँ जी दोस्तों, म्यूजिकली योर्स पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका ही पसंदीदा कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप विद आरजे सुलक्षणा पर्वत। और आज हम बात कर रहे हैं कि गर्मी का मौसम थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, लेकिन क्या फॉर्मूला आप अपनाते हैं टू बीट द हीट एंड टू स्टे कूल कूल। तो अब इसी सिलसिले में दो लोगों से मैंने पहले बात की। पहले तो भोपाल से जुड़े थे अजय दुबे जी, और उसके बाद पार्क स्ट्रीट से जुड़े दिगंबर गिरी जी। और फिलहाल आपसे कुछ और बातें मैं साझा करूं, जैसे कि अगर बहुत ज़रूरी हो निकलना, बहुत ज़रूरी हो, तो साथ में छतरी अवश्य रखें। लेकिन उस छतरी में भी ध्यान देने वाली बात है, अगर आप काले रंग के अम्ब्रेला को अवॉइड करते हैं तो बहुत अच्छा करेंगे। और आजकल तो हैट नुमा अम्ब्रेला भी निकल गया है, मतलब एक इलास्टिक लगा रहता है जिसे आप अपने सर पे लगा ले, और वो जो छतरी की डंडी होती है ना, उसे आपको पकड़ने की ज़रूरत नहीं होगी, और आपके दोनों हाथ जो है ना वो फ्री रहेंगे। तो मस्ती भी होगा और गर्मी से बचाव भी होगा। और बहुत सारे लोग होते हैं ना कि गर्मी के मौसम में जो है ना, अपने आप को कूल रखने के लिए दिन भर तो काम करते हैं, लेकिन शाम के वक्त वो नदी किनारे जाते हैं और वहाँ गंगा किनारे नदी किनारे घूमना उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो जो ठंडी ठंडी हवा है ना, मतलब वो एक तरीके से ना, मतलब वो एक ऐसी ठंडक देती है कि आपके दिन भर की जो थकान होती है वो मिट जाती है, और जो गर्मी भी होती है वो उड़नचू हो जाती है, और आप तरोताज़ा महसूस करते हैं, और इसके वजह से रात को बड़े आराम से सोते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि गर्मियों के मौसम में आपको क्या अवॉइड करना चाहिए। फ्राइड फूड तो अवॉइड कीजिए। इससे अब सुन के ये बातें आपको अच्छी नहीं लग रही है कि सुलक्षणा तुम ये क्या बोल रही हो, जिन चीज़ों को खाने में मज़ा आता है वही तुम कह रही हो ना खाओ। अजी आपके सिस्टम के लिए कह रही हूँ, आपके पेट के लिए कह रही हूँ, और ज़्यादा स्पाइसी फूड ना खाएं, सैलेड ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, फल ज़्यादा से ज़्यादा लें, जूस का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, और तभी तो आप कहेंगे कि हाँ मैं हूँ कूल, हॉट हॉट समर में भी मैं नहीं बनता हूँ किसी तरह का फूल। और फिलहाल आप सभी के लिए अगला ट्रैक फ्रॉम द मूवी अजब प्रेम की गजब कहानी तेरा होने लगा हूँ, नीरज श्रीधर, आतिफ असलम और अलीशा चिनॉय की आवाज़ में।

हाँ जी, समय हो चला है एक चुटकी नुस्खे का, और एक चुटकी नुस्खे में आज मैं जो आपसे शेयर करूंगी, साझा करूंगी, वो भी जुड़ा हुआ है, बहुत ही एक गोल्डन टिप देने वाली हूँ आपको। आप चाहे तो नोट करके रख लें, और सिर्फ रख ना लें बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करें अपने लाइफ में, खास करके गर्मियों के मौसम में। और बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जिनके मतलब नकसीर होता है, देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने से नाक से खून निकलने लगता है या फिर बहुत ज़्यादा उन्हें गर्मी लगती है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं बता दूं, और यूं भी अगर मतलब आप गर्मी के मौसम में अपने सिस्टम को कूल और हाइड्रेटेड रखना चाहते हैं तो एक काम कीजिएगा, रात मतलब शाम को जो है 7-8 बजे जो है या 9 बजे आप गोंद कतीला, बंगला में कहते हैं कोतीला, गोंद कोतीला, ये जो है ना इसे 7-8 दाने इसके लीजिए, मैक्सिमम 10 दाने लीजिए। ये चने के, छोटे चने के दाने होते हैं ना, काले चने वैसे ही होते हैं लेकिन सफ़ेद रंग के होते हैं, देखने में लगेगा जैसे मिश्री है लेकिन बहुत ही हार्ड होता है, और मिश्री को तो आप खा सकते हैं लेकिन गोंद कतीला को कच्चा आप नहीं खा सकते। तो आप क्या कीजिएगा, उसके 8 से 10 दाने को 1 गिलास पानी में डाल दीजिएगा, उसके साथ आप चाहें तो मिश्री भी डाल सकते हैं, और वो देखने में जितना हार्ड होता है आप देखिएगा कि सुबह जब उठेंगे 7-8 बजे या 6 बजे देखेंगे कि वो पूरा जेली में कन्वर्ट हो गया है, वो पूरा जेली टाइप हो जाता है। और सुबह उठकर आप चाहें तो आप उसे दूध में मिक्स करके, ब्रेकफास्ट के बाद दूध में मिक्स करके भी उसका घोल बना के, शेक बना के ले सकते हैं, या फिर उसमें नींबू का रस जो है डालकर, और गोंद कतीला जो है वो जेली जेली जैसा हो जाता है, मिश्री देते हैं तो उसे मिठास भी आ जाती है, और अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपका सिस्टम वाकई में बड़ा कूल कूल रहेगा, और सारे दिन आपको मतलब एक ठंडेपन का एहसास होगा, इन द सेंस कि इतनी ठंड नहीं लगेगी कि आपको स्वेटर की जरूरत पड़े, कहने का मतलब है कि आपको गर्मी से बहुत बचत मिलती है उससे और राहत मिलती है। तो आप ज़रूर अपनाइएगा इस नुस्खे को, इस टिप को, जाइएगा दुकान में, पंजारी की दुकान में जाके कहिएगा, या फिर जो जनरल स्टोर है वहाँ पे भी मिलते हैं आपको, कहिएगा कि मुझे गोंद कतीला चाहिए और उसे 8 से 10 दाना पानी में डालिए, मिश्री डालिए, और सुबह जब वो जेली फॉर्म में हो जाए उसे घोल दीजिए और नींबू का रस डालिए, या फिर आप चाहें तो उसे दही में भी मिक्स करके खा सकते हैं, चॉइस इज़ योर्स, लेकिन उसका सेवन करने से पेट ठंडा रहता है, दिमाग भी ठंडा रहता है। और अब अगला गाना

ऐसा है दोस्तों कि गर्मी के मौसम में शायद ही ऐसा कोई होगा कि जो आइसक्रीम खाना पसंद नहीं करता होगा। हाँ, अगर डायबिटीज हो तो बात अलग है, लेकिन बच्चा पार्टी तो आइसक्रीम पे मर मिटते हैं। गर्मी का मौसम हो और उनको एक के बाद एक आइसक्रीम देते जाओ, वो ना तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। और यही हालत जो है, और यही आदत और यही स्वभाव बड़ों का भी होता है। और ऐसा है कि म्यूजिकली योर्स के जरिए आप सभी तक म्यूजिकल आइसक्रीम भेजने की कोशिश कर रही हूँ। खा के जरूर बताइएगा कैसा लगा।

चलिए चलते चलते आपको और एक बात बता दूं, गर्मियों के मौसम में खासकर पश्चिम बंगाल में देखा गया है और भी कई राज्यों में लोग इसे अपनाते हैं और खाते भी हैं, ऐसा है कि गर्मियों के मौसम में खास करके रात को जो चावल बच जाता है उसमें पानी डाल के रख देते हैं और अगले दिन सुबह नाश्ता में जो है वो वैसे उसका नाम है पांता भात। तो होता क्या है कि उसमें बारीक बारीक प्याज काट के डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, आलू का थोड़ा सा भरता भी बना लेते हैं और उसका सेवन करने से क्या होता है ना कि मतलब आपका पेट बहुत ठंडा रहता है, एनर्जी भी मिलती है और बहुत रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल फील करते हैं। और ये जो गर्मी के जो मतलब गर्मी का जो पनिशमेंट है उससे आप बचे रहते हैं। तो आप पंता भात का भी सेवन कीजिए और अपने आप को कूल कूल रखिए। और चलते चलते आरजे सुलक्षणा यही कहेगी कि बस मौसम चाहे जैसा भी हो, अपने आप को देखना आपका सर्वप्रथम ड्यूटी है। कहते भी हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, तो आप वेल्दी तभी होंगे जब आप हेल्दी होंगे, सीजन चाहे कोई भी हो। और अब चलते चलते फिल्म चलते चलते से आपको सुनवाऊंगी अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में तौबा तुम्हारे ये इशारे, और इसी को सुनते सुनते आप आज्ञा दीजिएगा अपनी आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत को और मैं कहूंगी आपसे आपका दिन मंगलमय हो।

0: हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ लेकर ठीक 3:03 पर
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का। आप सुन रहे हैं 3 का तड़का।

0: 107 FM रेनबो पर टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर
1: जी हाँ, तीन का तड़का जहाँ होती है बॉलीवुड और हॉलीवुड की चटपटी खबरें, साथ ही साथ मूवी रिव्यूज और आने वाले फिल्मों के बारे में चर्चा पर, और साथ ही साथ चटपटे गाने भी। तो फिलहाल चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत तो हो चुकी है और पहला गाना सुन लेते हैं कुछ चटपटा सा, सुखविंदर सिंह और रेखा भारद्वाज की आवाज में।

तो इस गाने के साथ ही दोस्तों चलिए पहली तड़के की ओर चलते हैं। जी हाँ, बॉलीवुड तड़का। सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्मों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन इस रेस में सूर्या की साउथ फिल्म करू पू सबसे आगे निकलती दिख रही है। फिल्म ने चौथे दिन भी शानदार कमाई करते हुए बाकी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। वहीं आयुष्मान खुराना की पति पत्नी और वो टू की रफ्तार सोमवार आते आते धीमी पड़ गई। दूसरी तरफ संजय दत्त की आखिरी सवाल बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष करती भी नजर आ रही है। आंकड़ों के मुताबिक करुपू ने रिलीज के चौथे दिन यानी सोमवार को करीब 14.30 करोड़ का कारोबार कर लिया। उसके साथ ही फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 82.30 करोड़ तक पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि फिल्म जल्द ही 100 करोड़ क्लब में शामिल भी हो सकता है। वही पति पत्नी और वो दो ने तीसरे सोमवार को करीब 3.25 करोड़ की कमाई की। रविवार के मुकाबले फिल्म की कमाई लगभग 50% की गिरावट दर्ज की गई। अब तक फिल्म भारत में 20.75 करोड़ का नेट कलेक्शन कर चुकी है। फिल्म में आयुष्मान खुराना के साथ साथ सारा अली खान, वामिका गब्बी, राकुलप्रीत सिंह भी नजर आ रहे हैं और संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल का हाल बॉक्स ऑफिस पर काफी कमजोर दिखाई दे रहा है। फिल्म ने सोमवार को सिर्फ 21 लाख कमाए। 4 दिनों में इसका कुल कलेक्शन 2.16 करोड़ रुपए पहुंच पाया है। उधर कृष्णा अवतारम पार्ट 1 की कमाई में भी दूसरे सोमवार को भारी गिरावट देखने को मिली है। फिल्म ने 12वें दिन लगभग 43 लाख का कारोबार किया। अब इसका कुल कलेक्शन 20.95 करोड़ हो चुका है। रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी लगातार टिके रहने में कामयाब रही है। फिल्म ने तीसरे सोमवार को भी 1.15 करोड़ की कमाई की और अब इसका कुल नेट कलेक्शन 85.71 करोड़ तक पहुंच चुका है। कुल मिलाकर सोमवार के बॉक्स ऑफिस मुकाबले में करुपू ने सबसे मजबूत पकड़ दिखाई, जबकि बाकी फिल्मों ने को दर्शकों के सिनेमाघरों तक ले जाने के लिए अभी और मेहनत करनी पड़ेगी।

फिलहाल समय हो गया है हमारे अगले गाने का। जी हाँ, चलिए बैक टू बैक दो गाने सुन लेते हैं, अरिजीत सिंह निकिता गांधी की आवाज़ में तेरे प्यार में, और उसके बाद फिर आरी आरी।

अब चलिए दोस्तों थोड़ा सा हॉलीवुड की तरफ रुख करते हैं। बहुप्रतीक्षित फिल्म द डेविल वेयर्स प्रादा 2 ने अपने तीसरे दिन दिवसीय वीकेंड में वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर 500 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि इसे कई प्रमुख हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर के आगे रखती है। ये टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल श्रृंखला के एक भाग के वैश्विक बॉक्स ऑफिस टोटल को पार करने के करीब पहुंच चुकी है। वहीं फिल्म की सफलता भी जारी है और इसे घरेलू बॉक्स ऑफिस पर भी महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल करने की उम्मीद है। हालांकि वीकेंड के वास्तविक आंकड़े थोड़े कम रहे, लेकिन फिल्म का प्रदर्शन भी प्रभावशाली है। तीसरे वीकेंड में द डेविल वेयर्स प्रादा 2 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 17.8 मिलियन की कमाई मिलियन डॉलर्स की कमाई की है, जो पिछले वीकेंड से 55.1% की गिरावट दर्शाता है, जो मदर्स डे के कारण लाभान्वित हुआ। फिल्म की थिएटर संख्या 370 कम हो गई है, फिर भी ये उत्तरी अमेरिका में तीन वीकेंड में कुल 175.7 मिलियन डॉलर्स कमा चुकी है और अगली वीकेंड में 200 मिलियन डॉलर्स का आंकड़ा पार करने की उम्मीद भी है। फिलहाल ये था बॉलीवुड का तड़का हमारे दिन के तड़के में और बारी है अब अगले गाने की, तो चलिए सुन लेते हैं विशाल मिश्रा और शिल्पा राव की आवाज़ में अगला गाना।

तो दोस्तों लैपटॉप रेडी है, पॉपकॉर्न रेडी है और वीकेंड बिंज लिस्ट भी रेडी होनी चाहिए क्योंकि 18 से 24 मई तक ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का फुल ऑन धमाका भी होने वाला है। सबसे पहले चलिए बात करते हैं उस फिल्म की जिसकी खूब चर्चा हो रही है, वो है सिस्टम। जी हाँ, सोनाक्षी सिन्हा और ज्योतिका कोर्ट रूम में आमने सामने नजर आएंगी। पावर, प्रिविलेज और जस्टिस के बीच चलने वाली इंटेंस कोर्ट रूम थ्रिलर 22 मई को आ रही है। और अगर आपको दुबई की लग्जरी लाइफ देखना पसंद है तो तैयार हो जाइए देसी ब्लिंग दुबई के अल्ट्रा रिच इंडियन एक्सपैट्स की ग्लैमरस दुनिया। डिजाइनर लाइफस्टाइल, बिजनेस राइवलरी और हाई वोल्टेज ड्रामा। रिलीज हो रही है 20 मई को। वहीं टॉम क्लांसी की जैक रायन घोस्ट वॉर, जॉन करेंसिन्स की एक बार फिर डेंजरस मिशन पर निकल पड़े हैं CIA कॉन्स्पिरेसी, सीक्रेट मिशंस और धमाकेदार एक्शन का फुल पैकेज 20 मई को आप देख सकते हैं OTT पर। और अब बात करते हैं रिवेंज ड्रामा की जो काफी हटके लग रही है, सतरंगी बदले का खेल। गांव की सियासत, कास्ट पॉलिटिक्स और एक डबल लाइफ जीने वाला कैरेक्टर, डेंजरस रिवेंज स्टोरी लग रही है और रिलीज होने वाली है 22 मई को। वही हॉरर लवर्स भी बिल्कुल भी निराश नहीं होने वाले। तो मम्मी इस बार मम्मी सिर्फ डराएगी नहीं, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब भी करेगी। और फैमिली एंटरटेनमेंट की बात करें तो द सुपर मारियो गैलेक्सी मूवी मारियो और उसकी गैंग इस बार स्पेस एडवेंचर पर निकली है। फन, नॉस्टैल्जिया, एनिमेशन का जबरदस्त कॉम्बो स्पोर्ट्स फैन के लिए भी एक सॉलिड पिक आ रही है। अनटोल्ड यूके, लिवरपूल, मिरेकल ऑफ इस्तांबुल, फुटबॉल हिस्ट्री की सबसे लेजेंडरी कमबैक स्टोरी जो कि रिलीज हो रही है आज ही यानी कि 19 मई को। और हाँ, कॉमेडी भी है, लेडीज फर्स्ट, एक ऐसी दुनिया जहाँ वुमन रूल करती है और मैन साइडलाइन रहते हैं। शाचा बरोन कोहेन की एक क्वर्की कॉमेडी 22 मई को OTT पर आने वाली। तो भाई इस हफ्ते OTT पर रोमांस है, सस्पेंस है, हॉरर है, कॉमेडी है और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट भी। तो फिलहाल चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं कैसा रहने वाला यह हफ्ता OTT पर। होपफुली काफ़ी एंटरटेनिंग रहेगा। तो प्लेलिस्ट तैयार कर लीजिए, कौन कौन सी मूवीज़, कौन कौन सी सीरीज़ आप देखने वाले हैं। फिलहाल के लिए हम बढ़ेंगे आगे और सुनेंगे हमारा बैक टू बैक दो गाना। जी हाँ, चाशनी अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज़ में भारत फिल्म से और टोनी कक्कर, नेहा कक्कर की आवाज़ में धीमे धीमे पति पत्नी और वो से।

गोलमाल फाइव को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट का लेवल ऑलरेडी हाई था, लेकिन अब फिल्म में अक्षय कुमार ने एंट्री ने बस को डबल कर दिया है। बताया जा रहा है कि फिल्म में अजय देवगन के साथ पूरी पुरानी टोली वापसी कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अक्षय कुमार की कास्टिंग और उनकी फीस को लेकर हो रही है। खबरों की माने तो अक्षय कुमार ने फिल्म के लिए भारी भरकम फीस चार्ज की है, और चर्चा तो यहाँ तक है कि उनकी फीस अजय देवगन से भी ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन सामने नहीं आया। फैंस का मानना है कि अगर अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग और रोहित शेट्टी स्टाइल कॉमेडी का कॉम्बो जम जाए तो फिल्म थिएटर्स में हंसी का तूफान ला ही सकती है। रोहित शेट्टी की इस मल्टी स्टारर कॉमेडी मैडनेस को किस लेवल तक लेकर जाते हैं ये तो देखने की बात है। और एक बात तो तय है कि गोलमाल फाइव अभी से ऑडियंस की मोस्ट अवेटेड फिल्म्स की लिस्ट में शामिल भी हो चुकी है। तो फिलहाल चलिए देखते हैं कि क्या हाल होने वाला है, पर उससे पहले सुन लेते हैं हमारा अगला गाना भी। गाना कौन सा सुनेंगे जुबिन नौटियाल की आवाज़ में? चलिए द बॉडी से सुन लेते हैं एक प्यारा सा गाना, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे।

आगे बढ़ते हुए भी गोलमाल की बात हुई है, तो चलिए अब गोलमाल रिटर्न से सुन लेते हैं हमारा अगला गाना, फिर बढ़ेंगे अगले धमाल की ओर। जी हाँ,

0: सूर्य की घड़ी समय बता रही है 3:35 और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 3 का तड़का।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं 3 का तड़का। 3 का तड़का, 3 का तड़का, 107 FM रेनबो पर। 3 का तड़का, 3 का तड़का, 3 का तड़का, 107 FM रेनबो पर। रेनबो पर।
0: और अब 3 का तड़का में लगने वाला है एक और कॉमेडी लवर्स के लिए एक बड़ी खबर आने वाली है। जी हाँ, कॉमेडी लवर्स के लिए जो बड़ी खबर है वो है कि बॉक्स ऑफिस पर नहीं होगा धमाल 4 और वेलकम टू द जंगल का बड़ा क्लैश। पहले खबर थी कि अजय देवगन की धमाल 4 और अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर कॉमेडी वेलकम टू द जंगल एक ही समय पर रिलीज होने वाली है, लेकिन अब मेकर्स ने बड़ा फैसला लेते हुए क्लैश डाल दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों फिल्मों की रिलीज डेट को लेकर बातचीत हुई, जिसके बाद धमाल 4 की रिलीज आगे बढ़ा दी गई। यानी अब ऑडियंस बिना किसी कंफ्यूजन के दोनों कॉमेडी एंटरटेनर्स का मजा ले पाएगी। एक तरफ धमाल फ्रेंचाइज अपने क्रेजी कॉमेडी और आइकॉनिक गैंग के लिए जानी जाती है, तो दूसरी तरफ वेलकम सीरीज की मैडनेस, फनी कैओस और मल्टी स्टारर तड़का फैंस को पहले ही एक्साइट कर रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों फिल्मों में कौन ऑडियंस को ज्यादा हंसाने में कामयाब रहती है। फिलहाल इंतजार तो हम करेंगे ही, पर उससे पहले सुन लेंगे हमारा अगला गाना। आदित्य सिंह शर्मा जॉनिता गांधी की आवाज में फिल्म टोटल धमाल से।

0: कर फट जाए।
1: तो दोस्तों, जूनियर एनटीआर के फैंस के लिए आ गई है एक मैसिव अपडेट। डायरेक्टर प्रशांत नील और जूनियर एनटीआर की मच अवेटेड फिल्म, जो अब तक एनटीआर नील नाम से जानी जा रही थी, अब ड्रैगन टाइटल के साथ सामने आ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीएफसी सर्टिफिकेशन डिटेल्स में ग्लिम्स ऑफ ड्रैगन नाम देखा गया है, जिसके बाद फैंस का एक्साइटमेंट और भी बढ़ गया है। इतना ही नहीं, फिल्म का टीजर या ग्लिम्स का रन टाइम भी सामने आया है, जो करीब 4:35 बताया जा रहा है। यानी फैंस को मिलने वाला है फुल ऑन मास एक्शन ट्रीटमेंट। मेकर्स पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि फिल्म का फर्स्ट ग्लिम्स 20 मई को रिलीज होगा, और खास बात यह है कि उस दिन जूनियर एनटीआर का बर्थडे भी है। ऐसे में मिडनाइट रिलीज की पूरी उम्मीद की जा रही है। फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जूनियर एनटीआर को केजीएफ फेम प्रशांत नील के लार्जर देन लाइफ एक्शन वर्ल्ड में कैसा दिखाया जाएगा। फिल्म को एक हाई बजट मास एंटरटेनर बताया जा रहा है। रुक्मिणी वसंत फीमेल लीड के रोल में नजर आ सकती है, वहीं अनिल कपूर के भी अहम किरदार होने की चर्चा है। पहले विलन रोल के लिए टोबिनो थॉमस का नाम सामने आया था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। अब र्यूमर्स है कि मेकर्स ने इस रोल के लिए शाहिद कपूर से बातचीत की है, हालांकि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन बिल्कुल नहीं है। फिल्म अब 11 जून 2027 को थिएटर्स में रिलीज होगी, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल कोई बात नहीं, जूनियर एनटीआर के फैन तो हम भी हैं, और अब देखेंगे कि क्या आने वाला है नया, कैसा रहेगा ये फिल्म, ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हम जो कर सकते हैं वो ये है कि हम सुनेंगे हमारा अगला गाना। जी हाँ,

तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले तड़के की ओर। तड़का है रामचरण की पैदी के बारे में। जी हाँ, पैदी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर देखने के बाद फैंस की उत्सुकता काफ़ी बढ़ गई है। रामचरण का नया लुक, एक्शन और भावनात्मक दृश्य सभी को काफ़ी प्रभावित कर रहा है। ये फिल्म 4 जून 2026 को वैश्विक स्तर पर सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली है। इस ट्रेलर में रामचरण 1980 के दशक के आंध्र प्रदेश के एक युवा पहलवान पैदी की भूमिका में नजर आ रहे हैं। वे क्रिकेट बैट के साथ खेलते हुए कुश्ती के दाव लगाते हैं और गाँव की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए संघर्ष करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उनका लुक और प्रदर्शन दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा है। ट्रेलर में एक्शन, इमोशन और ड्रामा की बेहतरीन मिश्रण भी देखने को मिलता है। फिलहाल इंतजार रहेगा, ट्रेलर आ गया है तो अब फिल्म कैसी रहेगी इसके बारे में तो हम 4 तारीख को ही जान जाएंगे। फिलहाल के लिए चलते हैं आगे और सुनते हैं आतिफ असलम की आवाज़ में बत्ती गुल मीटर चालू से हमारा अगला गाना।

दोस्तों, सिनेमा इतिहास का सबसे बड़ा धमाका और एक ही फिल्म में सलमान खान, संजय दत्त और मोनिका बेलुची। अरब सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी फिल्म कही जा रही सेवन डॉग्स इन दिनों पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। करीब 40 मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस फिल्म को मशहूर निर्देशक जोड़ी आदिल एल अरबी और बिलाल फल्लाह ने बनाया, जो इससे पहले हॉलीवुड की सुपर हिट फिल्म बैड बॉयज फॉर लाइफ एंड बैड बॉयज राइड और डाई निर्देशित कर चुके हैं। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसका इंटरनेशनल स्टार कास्ट है। इसमें बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान, अभिनेता संजय दत्त और हॉलीवुड अभिनेत्री मोनिका बेलुची खास भूमिकाओं में नजर आएंगे। मुख्य किरदार निभा रहे हैं मिस्र के स्टार अहमद एज और करीम आदिल अजीज। फिल्म की इंटरपोल एजेंट और अपराध सरगना की कहानी है, जिन्हें एक खतरनाक ड्रग नेटवर्क को रोकने के लिए साथ आना पड़ता है। लेकिन फिल्म सिर्फ अपनी कहानी नहीं बल्कि अपने रिकॉर्ड तोड़ एक्शन के कारण भी सुर्खियों में है। सेवन डॉग्स ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दो बड़े रिकॉर्ड बनाए। सिनेमा इतिहास का सबसे बड़ा विस्फोट और एक ही टेक में सबसे ज्यादा हाई एक्सप्लोजिव इस्तेमाल करने का रिकॉर्ड। खास बात यह है कि इस धमाकेदार सीन में सीजीआई का इस्तेमाल नहीं किया गया है। शूटिंग सऊदी अरब के अल हौसन बिग टाइम स्टूडियोज में हुई, जहाँ करीब 170 टन TNT के बराबर धमाका किया गया। फिल्म के IMAX प्रीव्यू 19 और 20 मई को होंगे, जबकि भारत में ये फिल्म 28 मई को रिलीज होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये रिकॉर्ड तोड़ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना धमाका करती है। फिलहाल धमाके की बातें तो हो ही रही है, पर अब क्या है कि बैक टू बैक दो गाने सुनने का भी अब टाइम हो चुका है। फिलहाल चलिए सिद्धार्थ महादेवन और शिल्पा राव की आवाज में मलंग सुन लेते हैं धूम 3 से। उसके बाद सुनेंगे हमारा अगला गाना और आज के लिए फिलहाल 3 का तड़का, जो बॉलीवुड हॉलीवुड न्यूज़ है उसके बारे में, उसकी सारी खबरें यहीं फिलहाल मैं विराम लगाती हूँ, क्योंकि भाई बातें जितनी होंगी वो तो आगे बढ़ती ही रहेंगी, पर क्या है ना कि समय हाथ में काफ़ी कम होता है। 4 बजने वाले हैं एग्जैक्टली, 3:43 होने वाले हैं। जी हाँ, तो बैक टू बैक अब धमाकेदार दो गाने ही चलिए सुन लेते हैं, उसके बाद फिर वापस मुलाकात होगी आपसे चायन क्लासिक्स में FM गोल पर। बात करेंगे वर्ल्ड फेयर प्ले डे के बारे में। जी हाँ, क्या है ये, बात करेंगे इस बारे में, साथ ही साथ कॉल्स लेने हैं, रिक्वेस्ट भी लेने हैं। उसके बाद तो छाया लोग में प्यार भरे नगमे हैं ही 107 FM रेनबो पर। इंतज़ार में रहिए, हमारे साथ रहिए, हमारा साथ ऐसे ही दीजिए। फिलहाल चलिए 100.1 FM गोल्ड से, 100.1 FM गोल्ड में मिलने के इंतज़ार में 107 FM रेनबो में। फिलहाल मैं कहती हूँ टाटा बाय बाय और मिलते हैं थोड़ी देर बाद वापस।

0: नमस्कार, 107 FM रेनबो में आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ ठीक 7:03 पर लेकर आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
0: जी हाँ, छायालोक के प्रोग्राम का नाम। और क्योंकि आज है ट्यूसडे, तो आज है प्यार भरी बातों का, प्यार भरे गानों का दिन।
2: प्यार भरे नगमे।
0: तो दोस्तों, आज प्यार भरे नगमे में बस एक चीज पूछना चाहूंगी, क्या कभी नोटिस किया है आपने कि जिंदगी हमेशा बड़े पलों से याद नहीं रहती? कभी एक छोटी सी चाय, एक बारिश वाली शाम, या किसी के बिना वजह घर पहुंच कर मैसेज कर देना, ये सब दिल में ज्यादा देर तक रहता है। मोहब्बत शायद इसी का नाम है, ना हमेशा फिल्मी, ना हमेशा परफेक्ट, कभी छोटी सी उलझी हुई, कभी आधी अधूरी, कभी इतनी खामोश की लफ्जों की जरूरत ना पड़े, और फिर जब वो इंसान साथ हो तो भीड़ में भी तन्हाई नहीं लगती। और आज के इस महफिल में हम बात करेंगे उन गीतों की जो सिर्फ प्यार नहीं सुनाते, साथ होने का एहसास भी जगाते हैं। वो साथ जो कभी एक मुस्कुराहट में मिलता है, कभी एक इंतजार में, और कभी सिर्फ एक नाम सुनते ही दिल की धीरे धीरे से धड़कने में। क्योंकि कुछ लोग जिंदगी में देर से भले ही आते हैं, लेकिन फिर दिल से कभी नहीं जाते।

दोस्तों, आज के इस महफिल में जो कि हम बात कर रहे थे, हम बात करेंगे उन गीतों की जो सिर्फ प्यार नहीं सुनाते, साथ होने का एहसास जगाते। वो साथ जो कभी एक मुस्कुराहट में मिलता है, कभी एक इंतज़ार में, और कभी सिर्फ एक नाम सुनते ही दिल धीरे धीरे धड़कने लगता है। क्योंकि कुछ लोग जिंदगी में देर से आते हैं लेकिन फिर दिल से कभी नहीं जाते। शायद हर इंसान के लाइफ में एक ऐसा फेज ज़रूर आता है जब वो दुनिया को नहीं बस एक इंसान को ढूंढता रहा हो। ऑफिस के बीच ट्रैफिक के शोर में या रात के 2 बजे बालकनी में खड़े होकर दिल बस यही सोचता है कि काश वो इस वक्त साथ होता। और अजीब बात यह है कि प्यार हमेशा बड़े प्रॉमिसेस में नहीं होता। कभी किसी का ये कहना भी मोहब्बत लगता है कि स्वेटर पहन लेना, ठंड बढ़ गई है। कभी किसी का बिना वजह फेवरेट

पाँव भींच देना, कभी खाना खा लिया, कभी ठीक से घर पहुंच जाना, या छोटी छोटी बातें ही तो होती है जो धीरे धीरे किसी को अपना बना देती है। तो फिलहाल आपके लिए मेरा सवाल, जी हाँ, लॉन्ग ड्राइव, बारिश या फिर देर रात तक फोन पे बातें करना, आपके लिए रोमांस का फेवरेट मूड क्या है आपका? फिर से सवाल रिपीट करती हूँ कि लॉन्ग ड्राइव, बारिश या फिर लेट नाइट कॉल्स, रोमांस का फेवरेट मूड क्या है आपका? हम जानना चाहेंगे। फोन लाइंस खुली हुई है और फिलहाल आयुष्मान खुराना और नीति मोहन के वास में अगला गाना।

चलिए देखते हैं, हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे सवाल के बाद। कौन है? हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार, हेलो

0: चलिए फिर से ट्राई कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो हेलो नमस्कार। तो दोस्तों किसी वजह से फिलहाल तो फ़ोन लाइन्स कटती जा रही है कंटिन्यूसली, फिर से कॉल आ रहा है। चलिए एक बार फिर से लास्ट चांस ले ही देते हैं।
1: टू द नेक्स्ट वीडियो।

हेलो किसी वजह से दोस्तों लाइन थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। फिलहाल चलिए देखते हैं, अगला गाना हम सुन लेते हैं, उसके बाद फिर कोशिश करते हैं वापस से।

अभी फ़िलहाल कुछ टेक्निकल ख़राबी की वजह से बार बार फ़ोन लाइंस कट हो जा रही है, बट जल्दी से जल्द जितनी जल्दी हो सके मैं आप लोगों के कॉल्स ज़रूर लूँगी, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। तो दोस्तों बातें हो रही थी कि एक ऐसा ऐसे इंसान के बारे में बातें हो रही थी जिसकी छोटी छोटी बातें और छोटी छोटी आदतें एक बहुत बड़ी आदत बन जाती है, उसका कोई ख्याल ही नहीं रहता हमें। एक दिन जब उनकी आदत हो जाती है सुबह की चाय में, शाम की थकान में और रात की खामोशियों में, मोहब्बत का सबसे खूबसूरत हिस्सा शायद ये नहीं कि कोई आपको कितना प्यार करता है ना, बल्कि ये है कि उसके साथ आप कितने आप रह पाते हैं। नो एक्टिंग, ना इम्प्रेस करने की टेंशन, ना परफेक्ट दिखने की कोशिश, बस दिल हल्का सा सुकून महसूस करता है जैसे बारिश के बाद मिट्टी करती है, और तब लगता है हाँ शायद इसी को कंपेनियनशिप कहते हैं। वो रिश्ता जहाँ खामोशी भी अनकंफर्टेबल नहीं लगती, जहाँ कार राइड में दोनों चुप हो फिर भी लग रहा हो कि इस दुनिया की सारी बातें हो चुकी हैं। लेकिन हर मोहब्बत आसान नहीं होती, कुछ प्यार वक्त भी मांगता है, कुछ हिम्मत और कुछ सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार।

तो आगे बढ़ने से पहले चलिए दोस्तों जान लेते हैं, आ गया है भाई वेदर अपडेट हमारे हाथों में। तो फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से इस वक्त क्या कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है इसके बारे में जान लेते हैं। थोड़ा पूर्व वर्धमान जिले के कुछ इलाकों में अगले 2 से 3 घंटों के दौरान हल्के से मध्यम स्तर की आंधी तूफान और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस क्षेत्र के लिए येलो वार्निंग जारी कर दी गई है। वहीं पश्चिम मिदनापुर जिले के कुछ हिस्सों के लिए मौसम थोड़ा ज्यादा सक्रिय रहने वाला है। यहाँ अगले 2 से 3 घंटों में मध्यम स्तर से के गरज चमक वाले तूफान बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। इस इलाके के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी कर दी गई है। ऐसे मौसम में खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले और अपने मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सुरक्षित रखें। फिलहाल इतना ही मौसम अपडेट में। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और सुनते रहिए आपका पसंदीदा 107 FM रेनबो। फिलहाल चलिए सुन लेते हैं अगला रोमांटिक गाना।

एकदम, थैंक यू सो मच. तो ये थे शंकर हमारे साथ भाई, लॉन्ग ड्राइव, रोमांटिक, ये रोमांस यानी कि लॉन्ग ड्राइव. चलिए ठीक है, फिलहाल एक्सेप्ट करते हैं आपका ये जवाब और सुनवाते हैं उनका रिक्वेस्ट किया हुआ गाना साजन फिल्म से.

तो दोस्तों ये था शंकर जी ने जो रिक्वेस्ट किया था वो गाना हमने सुन लिया। फिलहाल चलिए बात करते हैं आगे की कुछ और नए नए रोमांटिक बातों की। जैसे बारिश, एक बात बताइए कि आप कभी किसी से बात करके दिल थोड़ा हल्का सा महसूस करते हैं, मतलब दिल बड़ा सुकून महसूस करते हैं पूरे दिन के हेक्टिक स्केड्यूल के बाद, जैसे बारिश के बाद मिट्टी करती है और तब लगता है हाँ शायद इसी को कंपेनियनशिप कहते हैं। वो रिश्ता जहाँ खामोशी भी अनकंफर्टेबल नहीं लगती, जहाँ कार राइड में दोनों चुप हो फिर भी लग रहा हो कि दुनिया की सारी बातें हो चुकी हैं। लेकिन हर मोहब्बत आसान नहीं होती, कुछ बार वक्त

मांगते हैं कुछ हिम्मत और कुछ सिर्फ इंतजार। कभी कभी दो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं फिर भी साथ नहीं रह पाते। लाइफ के अलग रास्ते, अलग शहर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ईगो, या फिर कभी बस वो एक गलत वक्त, और फिर शुरू होती है यादों की दुनिया। एक सॉन्ग सुनते ही दिल का रुक जाना, किसी कैफे के कॉर्नर को देखकर पुरानी शाम याद आना, या फोन गैलरी में अचानक एक पुरानी फोटो मिल जाना।

0: फिलहाल हो गया है समय 1947 नहीं, मतलब 7:47, मेरा मतलब यही था। आपने क्या समझा, कोई बात नहीं, जो भी समझाओ। फिलहाल हमारे जो लिसनर हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देखते हैं कौन है अपनी बातों के साथ। हेलो
1: हेलो जी, मैं नन्हे बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी नन्हे जी, कैसे हैं बताइए, घर परिवार में सब कैसे हैं?
1: बहुत अच्छा सब कोई,
0: एकदम
1: पक्का
0: ना।
1: हाँ
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। सब लड़ाई झगड़ा का कोई मतलब अभी सीन तो नहीं है ना?
1: लड़ाई झगड़ा का काम होने से लड़ाई झगड़ा तो होगा ना।
0: चलिए बताइए।
1: लेकिन एक तो बात मैं आपको बोलूंगा।
0: हाँ बोलिए बोलिए।
1: आप मुस्कुराते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं उनको सुनने में।
0: अच्छा, मैं तो दिखती नहीं हूँ, तो आप कैसे पता आपको कि मैं अच्छी लगती हूँ कि नहीं लगती हूँ?
1: अरे आपको अच्छे नहीं, मुझे अच्छा लगता है ना, मैं यही बात बोल रहा हूँ।
0: ओके बताइए।
1: आप ऐसी बात करते हैं ना, 6 फुट से 1.5 फुट हो जाएंगे एकदम।
0: ऐसा क्या? बताइए बताइए, आज के विषय के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप, या फिर कुछ बोलना चाहते हैं? बोले थे कि आप दिल खोल के बात करना चाहते हैं, तो बताइए क्या दिल खोल के बात करना चाहेंगे?
1: मैं दिल खोल के यही बात बोलूं, लॉन्ग ड्राइव होने से ना, खुद गाड़ी चलाएं, खुद एकदम कोई बगल में कोई गर्ल कोई भी रहेगी ना, अच्छा रहेगा, बीवी को छोड़ के।
0: अच्छा बताओ,
1: यही बात है।
0: बताइए तो आपके लिए रोमांटिक आइडिया, रोमांस का मतलब क्या है? लॉन्ग ड्राइव पे जाना बहुत, या फिर
1: हम तो साल भर में आपको बोलने से यकीन नहीं करोगी दीदी, हम एक एक महीना में ना कम से कम 2-3 बार हम लॉन्ग ड्राइव में एकदम चल जाते हैं।
0: अपनी बीवी को लेकर या फिर गर्लफ्रेंड को लेकर?
1: नहीं गर्लफ्रेंड को लेकर नहीं, मेरा गर्लफ्रेंड का नाम मालूम है आपका, यहाँ आरती है ना, इसी का नाम है, उसका नाम भारती है, समझी दीदी?
0: अरे अरे अरे, भारती दी दूसरे चैनल में प्रोग्राम कर रही है आज, वैसे बता दूं क्या मैं?
1: नहीं नहीं, वो आरजे भारती नहीं है, ये कोई बंगाली लड़की है।
0: ये भी बंगाली है।
1: लेकिन ना जिसका हम तो हम अपने गर्लफ्रेंड बोलता हूँ ना
0: जी,
1: भारती, भारती जिसका नाम ना है, इसका एक तो नाम ना बहुत अच्छा है, हम लोग का हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है
0: एकदम, और मेरी मेरी दादी माँ का भी नाम भारती ही था।
1: लेकिन जानती है दीदी?
0: हाँ बोली।
1: वो मेरे बेटी लोग तो बहुत प्यार करती है, हम उस दिन आपको कहा बोले हैं, बात बोलना नहीं चाहिए यार, लेकिन बोल दे रहा हूँ एकदम, हम तो कोई बात तो अंदर नहीं रखता हूँ ना, लेकिन ना हमको इतना हेल्प करती है ना, आपको कहा बताए हम उस दिन बोले ना, मेरा बीवी को जाने का बहुत दिल कर रहा है, बोले कितना लगेगा तो बोल, हम बोले 5,000 दे दो ना, हम इधर से 5 लिए, माँ से 5 लिए, अब बड़े भैया से 5 लिए, 5,000 चल गया तुम लोग।
0: चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बहुत हेल्पफुल होना भी चाहिए, ऐसा होगा तभी तो पता चलेगा ना कि इंसान कौन सच्चा इंसान है, कौन हमारे हमें हर
1: हम बोले ना सब पे एक तरीका कम देंगे पैसे एकदम। लेकिन दीदी मेरा एक तो पसंद गाना बजाओगे अभी?
0: बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। चलिए
1: अभी देखिए, शादी के दिन जब नहीं हुआ था नहीं, सब गाना बहुत ज्यादा सुनते थे, लेकिन अभी ना इस गाना में ज्यादा इंटरेस्ट ज्यादा लगता है अभी।
0: कोई बात नहीं, हम सुना देंगे आपको, बताइए।
1: तेरे दर पर सनम चला है, तू ना आए तो हम चला है।
0: अरे वाह, बहुत ही उम्दा, बहुत ही खूबसूरत गाना है, वन ऑफ माय फेवरेट कुमार शानू का। आपको बता दो,
1: पसंद है का?
0: हमको बहुत पसंद है ये गाना।
1: लेकिन दीदी हम जानती आप मैं कहाँ का रहने वाला हूँ,
0: कहाँ कहाँ
1: हम, लेकिन मैं तो पिपल मंडी है ना दीदी, लड़का हुआ का, लेकिन हम अपने नानी के घर में रहता हूँ।
0: कोई बात नहीं, ठीक है, होते रहता है, सिचुएशंस आते हैं तो हमें अलग अलग जगह पर रहना पड़ता है, मैं भी रही हूँ।
1: अगला बात मैं एकदम साफ बोलता हूँ, मेरा घर में ना मेरे दादी लोग हमको क्या बोलते हैं मालूम है आपको?
0: क्या बोलते हैं?
1: ढकैया बंगाल बोलते हैं उनको।
0: तो ठीक है ना, अच्छी बात है, कई तरह की भाषाएं आनी चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है?
1: हम लोग मेरे चचेरे भाई लोग सबको हमको ढकैया बंगाली बोलते हैं, बोलते तो ढकैया हम लोग तो मिलता नहीं है।
0: कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये तो आपके लिए बेनिफिट है ना, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ की भाषा अच्छी तरह से जानते हैं।
1: लेकिन उर्दू

0: तो पढ़ाई हम सबसे जब हमको जब बोलता था ना बोलता रियलिटी राम चल हम बोलते थे ना शाम चल ऐसे हमको पढ़ाती ना उस टाइम मेरी दादी हमको उस टाइम बहुत अच्छा हम अभी तक मेरा दिमाग में है वो सब पढ़ा सब।
1: अच्छा
0: हम बहुत कुछ दीदी मेरा दिमाग एकदम मेरा घर में बोलते ना नन्हे का दिमाग बहुत है हम जानते हैं 5 दिन में ड्राइवरी सीख लिए एकदम।
1: अरे वेरी गुड वेरी गुड। मतलब आप अच्छे बहुत अच्छे सी मतलब लर्नर है बहुत जल्दी सीख जाते हैं चीजें है ना
0: एकदम जल्दी जल्दी सीख रहे हैं हम जानते हो हम जब मॉडर्न में प्रैक्टिस करते थे उस टाइम कितना अच्छे से एकदम प्रैक्टिस करते थे हमको कोच बोलते थे थोड़ा पैसा नहीं लगेगा एकदम 3 महीने प्रैक्टिस किए थे ना उन लोग का एकदम पसंद एकदम हो गए थे।
1: चलिए बहुत
0: एकदम अच्छे लगे मेरा बीवी का चक्कर में एकदम सब कुछ छोड़ दिए।
1: कोई बात नहीं कभी कभी वो भी जरूरी होता है छोड़ना है ना
0: छोड़ना जरूरी है लेकिन ना अभी कोई चीज देख ना कोई चीज का हमको बोला तुम तो अभी तक यही सारा बात है दीदी लेकिन आप मेरा पसंद है गाना लेकिन आप लोग ऐसी बात करते ना दिल खोल के बात करते ना दी बहुत खुशी होता है हम लोग को।
1: तो हमें दिल खोल के बात ये प्रोग्राम तो इसी वजह से है ना कि हम दिल खोल के बात करें प्यार भरे नगमे में हम रोमांटिक बातें भी करते हैं। तो आपने अभी तक ये नहीं बताया हमें कि आपके लिए रोमांटिक क्या है मतलब लॉन्ग ड्राइव पे जाना या फिर फोन पे देर रात तक बातें करना ढेर सारे।
0: फोन हम तो ऐसे भी लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं दीदी हमेशा जाते हैं लेकिन मेरा गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है आप जानते हो हम मेरे माँ का बड़ा फोन लेके चले जाते ना हम जब जाते हैं ना हम बोलते थे फोन लेके चलिए हम न्यू ऐप चला देते उस टाइम ना और आप लोग का प्रोग्राम हम जाते ना यूट्यूब का गाना सुनते यहाँ का आकाशवाणी 2 घंटे का प्रोग्राम सुबह का 1 घंटा
1: नन्हे जी तो आपका गाना फटाफट बजा देते वरना पूरा गाना नहीं सुन पाएंगे आप। अब
0: कोई बात नहीं आप इतना बात कर लिया मेरा खुश हो गया आपको ना दीदी बोल के मानते हो दीदी आपका भाई को ना आपको इज्जत करना ठीक है हम आपको बहुत इज्जत करते
1: हैं। थैंक यू सो मच इतनी इज्जत देने के लिए इतना प्यार देने के लिए और फिलहाल हम गाना बजाए ओके फिर बात करेंगे आपसे अच्छे से रहिएगा। तो ये थे नन्हे जी बाटा नगर से और चलिए सुनाते हैं इनका रिक्वेस्ट किया हुआ गाना। और इसी के साथ इस गाने के साथ ही हमारा पहला घंटा भी खत्म होने को आया दोस्तों मिलते हैं ठीक 2 मिनट बाद वापस 8:02 मिनट पर।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक प्यार भरे नगमे।
1: छाया लोग प्यार भरे नगमे के दूसरे घंटे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 107 FM रेनबो है ये, और मैं हूँ पापिया आपके साथ। और बातें हो रही थी भाई किसी को याद करके। जी हाँ, तो कुछ यादें सच में बहुत जिद्दी होती है। रात का एक वक्त होता है जब दुनिया धीरे धीरे सो जाती है, लेकिन दिल थोड़ा और जाग जाता है। उस वक्त कुछ लोग पुराने चैट्स पढ़ते हैं, कुछ फेवरेट गाने सुनते हैं, और कुछ बस चुपचाप सीलिंग देखते हैं, क्योंकि कुछ नाम रात में और ज्यादा याद आते हैं। और तब दिल के किसी कोने से एक आवाज आती है, अगर तुम साथ हो तो शायद सब थोड़ा आसान हो जाए। फिलहाल थोड़ी देर पहले प्रिया दी का फोन आया था हावड़ा से, और सुनना चाहती थी वो जाने मन चुपके चुपके फिल्म मुस्कान से। तो चली प्रिया दी, लेट हो गया, आई एम सॉरी, पर रिक्वेस्ट रखा मैंने आपका। फिलहाल चलिए सुन लेते हैं उनका रिक्वेस्ट किया हुआ गाना।
2: जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से चुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

0: तो दोस्तों, आज के विषय में थोड़ी बात करने के लिए हमारे साथ हमारे कॉलर भी जुड़ चुके हैं इस घंटे के पहले कॉलर। चलिए देखते हैं कौन है। हेलो,
1: गुड इवनिंग पापिया जी।
0: गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्यार भरे नगमे में।
1: अर्णव देवरा बोलो, आलम मजा से।
0: जी अर्णव जी, कैसे हैं? घर परिवार में सब कैसे हैं?
1: सब ठीक है, आप अच्छे हैं? तो
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गर्मी की वजह से हाल बेहाल है पता है, लेकिन फिर भी पूछ रही हूँ।
1: गर्मी तो खराब हो गई है।
0: जी जी, काफी गर्मी है। तो बताइए आज के विषय के बारे में, आपके लिए रोमांस का मतलब क्या है? लॉन्ग ड्राइव पे जाना, बारिश में बैठ के चाय पीना, या फिर पूरी रात रात भर जाग के बातें करना?
1: मुझे तो वो थर्ड ऑप्शन है, वो बात करने में अच्छा लगता है।
0: अच्छा, फोन पे लंबी लंबी बातें करना। ओके ओके, चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, इतना प्यार दिखाने के लिए। अब कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, किसको डेडिकेट करना चाहते हैं, ये बता दीजिए।
1: मुझे अभिजीत जी और कविता कृष्णमूर्ति का वो गाना है मासूक फिल्म से, सुना दीजिए थोड़ा।
0: कौन सा गाना?
1: कौन है?
0: कौन हो तुम?
1: हाँ,
0: ओके ठीक है। और किसी को स्पेशल को डेडिकेट करना चाहते हैं ये गाना?

0: होगा ना, आपको लिए डेडिकेट करते हैं।
1: ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, सुनाते हैं आपको आपका फेवरेट गाना और मिलते हैं फिर किसी और दिन। ओके
0: ओके,
1: बाय बाय। तो चलिए दोस्तों, रिक्वेस्ट किया हुआ गाना अब सुनना तो बनता ही है, अभी हम सब मिलके सुनते हैं अभिजीत भट्टाचार्य और कविता कृष्णमूर्ति के पास में ये गाना।

0: दोस्तों, मोहब्बत सिर्फ पास रहना नहीं होती, कभी कभी दूर रहकर भी लोग दिल के सबसे करीब होते हैं। एक शहर में बारिश और दूसरे शहर में कोई उसकी याद में चाय बना ले, बस वही प्यार है। फिलहाल हमारे साथ हमारे कॉल पर जुड़ चुके हैं हमारे अगले कॉलर, देखते हैं कौन है। हेलो,
1: गुड इवनिंग पपीज।
0: गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका छाया लोक में।
1: मुनीरुद्दीन लश्कर बात कर रहा हूँ, दक्षिण शाटाइल हावड़ा से।
0: जी मुनीरुद्दीन दा, कैसे हैं? घर परिवार में सब कैसे हैं?
1: आपके दो हस्ते ऊपर वाला आशीर्वाद से बहुत अच्छा है, और हमारे पापिया जी का प्रोग्राम है तो कुछ यादगार होते हैं।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस आप लोग मिलके सब यादगार बनाते हैं प्रोग्राम को।
1: जिंदगी की कुछ लम्हे तो यादगार होते हैं, यादों में कुछ लोग खास होते हैं। यूं तो दूर रहते होते हैं नजरों पे, पर उनके एहसास दिल के पास होते हैं।
0: बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा बोला आपने। बताइए आज के विषय के बारे में क्या बताएंगे आप?
1: आज के विषय के बारे में आप जो ऑप्शन दिया, तीनों ही जरूरत है कुछ कुछ टाइम पर।
0: अच्छा,
1: सभी को तो एक नहीं होता है। पर्सन ऊपर डिपेंड करता है कौन सा परिस्थिति पे इसका समाई उनका निकलता है।
0: ये डिप्लोमेटिक आंसर हो गया मुनीरुद्दीन दा? ये डिप्लोमेटिक आंसर हो गया। मैंने पूछा कि आप क्या करते अगर, मतलब रोमांस का मतलब आपके लिए क्या होता है। आपने तो जनरलाइज कर दी बातें, है ना। हाँ, छुपी हुई बातें बाहर नहीं आएंगी इसलिए, है ना।
1: बातों के पर तो कोई कुछ नहीं होता।
0: आप
1: बात बताने के लिए कुछ तो होना चाहिए।
0: आपके लिए रोमांस का मतलब क्या है बताइए, आपके लिए। बस आपका ओपिनियन मुझे जानना है।
1: रोमांस का मतलब आंखों से आंखों जो देखा है यही रोमांस है।
0: अच्छा,
1: कुछ पाने का नाम रोमांस नहीं, कुछ खोने का नाम ही रोमांस है, यही मेरा रोमांस है।
0: ओके ओके, ठीक है, चलिए चलिए हम एक्सेप्ट करते हैं। और सुनना चाहेंगे अब आपकी कौन सा गाना रिक्वेस्ट करना चाहते हैं?
1: ये आंसर आपका चॉइस नहीं हुआ तो मैं कुछ करने का नहीं है। लेकिन मैं ऐसा यही एहसास करता हूँ जब मन के चाहता हूँ वो है और नहीं है। मैं तो चाहता हूँ, मेरा मामले लिए सबसे बड़ा है।
0: ठीक है, चलिए बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: प्यार झुकता नहीं फिल्म से शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, ना जाने क्यों ये गाना प्लीज सुना दीजिए। खास करके हमारे प्यारे पापिया जी के लिए और सोमनाथ घोष के लिए।
0: ओके ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं,
1: बाय।
0: तो चलिए भाई, रिक्वेस्ट किया हुआ गाना फटाफट सुन लिया जाए।

0: स्टूडियो की घड़ी में 8:28 और 4 सेकंड समय हो गया और हमारे अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं। चलिए देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग बातें होती है उनसे। हेलो,
1: गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका छाया लोक के प्यार भरे नगमे में।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।
0: नाम बताइए। चलिए, हाँ जी,
1: पारस पंडित चुचड़ा हुगली से बोल रहा हूँ।
0: जी पारस जी, कैसे हैं, घर परिवार में सब कैसे हैं?
1: जी दीदी, सब घर परिवार में स्वस्थ है, मस्त है, जबरदस्त है।
0: सिर्फ गर्मी को छोड़ के, वो गर्मी की बात हम साइड में रख रहे हैं, ठीक है, गर्मी की बात ही नहीं कर रहे फिलहाल।
1: ठीक है दीदी, सब खुशहाल है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और भगवान करे कि खुशहाल ही रहे आप लोग।
1: आपका भी कामना करते हैं कि आपका भी घर परिवार खुशहाल रहे।
0: एकदम एकदम एकदम, थैंक यू सो मच। बस आप लोग की दुआ है कि सब कुछ ठीक ठाक कुशल मंगल चल रहा है।
1: जी दीदी, हम भी यही चाहते हैं कि कुशल मंगल ही रहे।
0: जी तो बताइए,
1: आपके से रहे।
0: तो पारस जी बताइए, आपके लिए रोमांस का मतलब क्या है?
1: तो रोमांस का मतलब तो दीदी सबसे पहले तो बात करना ही होता है। तो प्यार में अगर बात नहीं किया जाए तो फिर प्यार आगे नहीं बढ़ता है। तो फिर प्यार कीजिए और बातें कीजिए,
0: तो
1: और फिर लॉन्ग ड्राइव है ही है।
0: अच्छा,
1: और समय समय पर फिर मतलब बातें करते करते ही लॉन्ग ड्राइव में चलना भी पड़ जाता है।
0: ओके ओके, ठीक है, चलिए एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल,
1: हम भी पहले जब क्या बोले रोमांस करते थे तो उस समय फ्री कॉलिंग आता था, नाइट फ्री कॉलिंग।
0: अच्छा,
1: तो
0: अच्छा,
1: मत सोचिए कि रात रात भर बातें करते थे,
0: मतलब नींद हराम करते थे बैठ के।
1: उस समय 10 रुपया का पैक में नाइट कॉल फ्री आता था।
0: अच्छा ओके,
1: नाइट कॉल फ्री आता था तो 10 रुपया का कार्ड भरते थे और सुबह 6 बजे तक बातें करते थे।
0: वाह।
1: वो सब दिन दीदी अब चला गया है, अब घर परिवार में व्यस्त है और घर परिवार को ही लेकर लॉन्ग ड्राइव करिए और बातें करिए, यही अब मेरा जिंदगी है।
0: देखिए अभी अभी आपको लग रहा था कि खतरा मनरा रहा है, इसीलिए आपने बातें बदल दी। कोई बात नहीं, चलिए ये भी सही है, ये भी बिल्कुल सही है। तो पारस जी कौन सा
1: प्यार दीदी जिंदगी में एक बार आना ही है, चाहे सफल हो या असफल।
0: कोई बात नहीं, दोनों का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी होता है ना, चाहे साथ हो वो इंसान या नहीं हो, लेकिन तो बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप
1: मुझे सुना दीजिए, दूध का कर्ज फिल्म का शुरू हो रही है प्रेम का।
0: ओके ठीक है, चलिए सुनवाते हैं और हम भी सुनते हैं आपके साथ। ओके, और फिर मिलते हैं।
1: गुड नाइट।
0: गुड नाइट, गुड नाइट, अच्छे से
1: रहिएगा।
0: तो चलिए सुनते हैं, शुरू हो रही है प्रेम कहानी, अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज में।

0: कभी कभी किसी एयरपोर्ट पर गुड बाय के वक्त स्ट्रांग दिखने की कोशिश, ट्रेन के चलते ही आंखों का भर आना, वीडियो कॉल पे तुम सो जाओ कहकर खुद देर तक ऑनलाइन रहना। इश्क इन्हीं छोटी छोटी जगहों में तो छुप कर रहता है और फिर कुछ मोहब्बतें वापस भी आती है सालों बाद, बिल्कुल अचानक, किसी शादी में, किसी सोशल मीडिया नोटिफिकेशन में या किसी ओल्ड सॉन्ग के थ्रू। और अजीब बात यह होती है कि वक्त बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन कुछ फीलिंग्स बिल्कुल नहीं बदलती। दिल फिर वही पुरानी गली में चला जाता है, वही हंसी, वही ऑकवर्ड साइलेंस, वही आंखों की बात, जैसे मोहब्बत ना कहीं छुप कर वक्त रोक लिया हो। फिलहाल हमारे बहुत देर से हमारे जो कॉलर है वो इंतजार कर रही है, तो चलिए देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्यार भरे नगमे में।
1: जी नमस्कार, मैं बुल्टी बोल रही हूँ हावड़ा से।
0: जी बुल्टी, कैसी हैं, घर परिवार में सब ठीक है?
1: जी सब ठीक ठाक है, आप कैसी
0: हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच।
1: जी आपका प्रोग्राम सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
0: थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बुल्टी बताइए, आपके लिए रोमांस का मतलब क्या है?
1: जी मेरे लिए तो बस कुछ दो तीन चीजें ही है, जैसे किसी खास इंसान के प्रति गहरा आकर्षण, और उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करना, या फिर कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। और पहले का जो होता था, मतलब जब हम लोग पहला जिसके साथ मतलब एक आकर्षण होता है किसी के प्रति, अगर
0: जी जी,
1: तो वो कभी वो चीज भुलाए नहीं जाते। तो वो जो टाइम स्पेंड करना या फिर बातें करना, जैसे आपने कहा फोन पे बातें करना हो या फिर कहीं दूर तक वॉक करना हो, वो मेरे लिए वो समझाता है कि मतलब रोमांस का मतलब तो वो ही होता है।
0: ओके,
1: पहला जब कुछ होता है तो तब वो चीजें आपने भी ठीक ही कहा कि वो तो कहीं ना कहीं हम उन गलियों में आपसे घूमते रहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: हाँ, वो एक खास चीज होता है जो कभी भूलते नहीं।
0: जी तो बोलिए बताइए, अब रोमांटिक बातें तो कर ली, तो कौन सा रोमांटिक गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: ये मुझे हम तुम्हारे सनम का टाइटल सुनना।
0: ओके, किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, किसी खास को?
1: सभी रोमांटिक अभी जो सुन रहे हैं लोग, उन सभी
0: को। ओके चलिए, ठीक है ठीक है, उस बीच वो खास इंसान भी शायद हो जाए, सुन ले। ओके चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय बाय, अच्छे से रहिएगा। तो ये थी बुल्टी हावड़ा से, और सुनना चाहते हैं हम तुम्हारे हैं सनम का टाइटल ट्रैक, तो चलिए हम भी सुन लेते हैं साथ में।

0: हो गया है भाई, 15 मिनट बाकी है शेष, तो फटाफट ले लेते हैं हमारा अगला कॉल भी, देखते हैं कौन है हमारे साथ अपने रिक्वेस्ट के साथ। हेलो
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है।
1: बावड़िया बोल कर देखे, शांतनु घोष बोल
0: जी। शांतनु दा कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका प्यार का
1: नगमा में।
0: एकदम घर पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घर परिवार में सब ठीक ठाक है ना?
1: सब ठीक है जी।
0: तो बताइए शांतनु दा, आपके लिए रोमांस का मतलब क्या है?
1: रोमांस मतलब मैंने दो एक दिन कोथा घूरे घूरते जाते ओटाई रोमांस भलो लगे। फोनर मध्य বললে ও তো ফোনের মধ্যে হচ্ছে না, আনরা তো থাকবে না।
0: আচ্ছা, ওকে, গুড আইডিয়া, বহুত আচ্ছি বাত হ্যায়। চলিয়ে বতাইয়ে কোন সা গানা সুননা চাহতে
1: হ্যায়? হ্যাঁ, আন্দোলন বইয়ের কিতনি দিনে কো বাদ মিলে হ্যায় তুম এই গানটা শুনিয়ে দেওয়া।
0: ওকে ঠিক হ্যায়, চলিয়ে সুনবাতে আপকো, ঠিক হ্যায়, আর ফির মিলতে হ্যায় শান্তনু দা বাদ মে। ওকে
1: হ্যাঁ,
0: ওকে, বাই বাই, টেক কেয়ার,
1: বাই, গুড নাইট,
0: গুড নাইট। তো ইয়ে থে শান্তনু দা বাউরিয়া সে, ও চলিয়ে रिक्वेस्ट किया है भाई, समय भी नहीं है, तो फटाफट गाना सुन लेते हैं।

दोस्तों, लाइफ में हर प्यार को हैप्पी एंडिंग नहीं मिलती, लेकिन हर सच्चा प्यार इंसान को थोड़ा बेटर ज़रूर बना देता है। कुछ लोग साथ रहकर मोहब्बत सिखाते हैं, कुछ लोग बिछड़कर, पर दोनों ही दिल में रहते हैं हमेशा। और शायद इसीलिए इतने सालों बाद भी रोमांटिक गाने कभी पुराने नहीं लगते, क्योंकि हर जनरेशन को किसी न किसी का इंतज़ार ज़रूर रहता है। कोई ऐसा जिसके साथ साइलेंस भी म्यूज़िक लगे, जिसके साथ सफ़र छोटा लगे और ज़िंदगी थोड़ी कम मुश्किल लगे। तो आज के इस महफ़िल में ऐसे ही कुछ नगमों को हम महसूस कर रहे हैं, जो सिर्फ प्यार नहीं, साथ होने की गर्माहट भी सुनाते हैं। क्योंकि दिल आज भी धीरे से वही कहता है कि तुम हो तो लगता है सब ठीक हो जाएगा। कभी भी, कभी कभी ना, जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, काम भी, लोग भी, दिन भी, फिर भी अंदर कहीं एक हल्का सा खालीपन महसूस होता है, जैसे दिल किसी की आवाज़ मिस कर रहा हो। किसी का पहुंच गए, किसी का खाना टाइम पे खा लेना, किसी का बिना वजह एक गाना भेज देना, और तब समझ आता है इंसान हमेशा मोहब्बत नहीं ढूंढता, कभी कभी बस वो अपनापन ढूंढता है। वो एहसास जहां आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता कि आप उदास है, सामने वाला बस बिना बोले समझ जाए। शायद इसीलिए कुछ रिलेशनशिप्स दुनिया को बहुत ऑर्डिनरी लगती है, लेकिन उन दो लोगों के लिए वो पूरी दुनिया होती है।

दोस्तों, मोहब्बत बड़े सिनेमैटिक मोमेंट्स में कम और छोटी सी आदतों में ज्यादा रहती है और फिर एक स्टेज आता है जब किसी की प्रेजेंस आदत नहीं जरूरत लगने लगती है। दिन में कितने भी लोगों से बात हो जाए लेकिन अगर उस एक इंसान से बात ना हो तो लगता है दिन मानो अधूरा सा हो गया है। हर लव स्टोरी का एंड हैप्पीली एवर आफ्टर भी नहीं होता लेकिन हर सच्ची लव स्टोरी इंसान के अंदर कुछ ना कुछ हमेशा के लिए बदल देता है और फिर कुछ प्यार ऐसे भी होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं, जहां आई लव यू रोज नहीं बोला जाता पर चाहे बिना पूछे बन जरूर जाती है। और सच कहूं तो शायद वही मोहब्बत सबसे खूबसूरत होती है क्योंकि जवानी वाला इश्क दिल तेज धड़काता जरूर है लेकिन उम्र भर साथ रहने वाला प्यार दिल को सुकून जरूर देता है। सोचिए कितना खूबसूरत होता है वो एहसास जब दुनिया की सारी अनसर्टेनिटी के बीच एक इंसान आपसे कहे मैं हूं ना बस। कभी कभी इतने दो शब्द, ये जो दो शब्द हैं, ये तीन शब्द हैं इनफैक्ट, ही पूरी जिंदगी हल्का कर देते हैं और तब दिल धीरे से कहता है हाँ अगर तुम साथ हो तो शायद मैं हर मुश्किल पार कर लूं। फिलहाल प्यार भरे नगमे का जो ये सफर है आज बस यही तक, जाते जाते अगर तुम साथ हो। तमाशा फिल्म से सुनेंगे अलका यानिक और अरिजीत सिंह की आवाज में और फिलहाल के लिए मैं पापिया भी लूंगी आपसे विदा, मिलूंगी किसी और दिन किसी और समय कुछ और बातों और गीतों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए 107 एफएम रेनबो है ये, थोड़ी ही देर में सुनेंगे अगला प्रोग्राम। मिलती हूँ अगले महीने फिर ढेर सारी बातों के साथ और यादों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ

बाहुबली वार किया, जीना दुश्वार किया, तेरे मेरे रास्ते में खड़ी दीवार किया, है ना, है ना।